हमारे सामने है वो जानबूझकर लोगों को बीमार करने की तरफ चल रहा है। जबरदस्ती दवाइयां, अब ब्लड प्रेशर की दवाई दी, ब्लड प्रेशर की दवाइयां क्या है कि भाई इसमें ब्लड में, ब्लड के वेसल्स में जो नाड़ियां हैं इसमें प्रेशर ज्यादा आ गया है। प्रेशर कैसे काम करें, इसे पानी निकाल देते हैं। पानी निकाल दीजिएगा तो उसमें जो साल्ट भी तो निकलेंगे ना, जो नॉर्मल कंटेंट है ब्लड का वो भी तो निकलेगा ना, वो कम हो जाएंगे। अल्टीमेट ओ भाई तेरा तो ब्लड पीछे सगना हो गया है क्योंकि पानी निकल गया है। अच्छा तेरे को ब्लड थिनर देना चाहिए। जितने भी सुन रहे हैं ये सब जानते होंगे कि ब्लड प्रेशर के लोगों को फिर वो साथ में कोई प्लेवेक्स वगैरह या कोई एस्प्रिन वगैरह या कुछ तरह की दवाइयां लगाते हैं कि ब्लड थिनर दे रहे हैं हम। तो क्या है, एक तरफ थप्पड़ लगाओ मुंह को दूसरी तरफ कर दो और दूसरी तरफ लगाओ थप्पड़ से दूसरी तरफ कर दो। ये इस तरह का सिलसिला जो चल रहा है, जब भी आप समझें कि मैं बीमार हूं और मैं ठीक नहीं हो रहा, जो ठीक नहीं हो रहा तो ये तीसरी बात आप सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि एक बार आप ऐसा ऐसा करके अपनी दवाइयों को टेपर ऑफ करें। एकदम नहीं मैं छोड़ कहने की कारण, क्योंकि एकदम तो आप चाय भी नहीं छोड़ सकते, ये तो नशे की दवाइयां हैं। ये तो इस तरह के हैं कि चलते चलते इन सब दवाइयों ने अपनी एक कंसंट्रेशन आपके सेलों में बना ली है। अब वो छोड़ने वाली नहीं है। आग आग लेने आए आई थी घर वाली बनकर बैठ गई, अब तो वो जिम्मेवार बन के बैठी हुई है, अब वो एक वहां की जरूरत बन गई है। सो उसको एकदम नहीं छोड़ना है। अगर आपकी क्योंकि उस उन हालातों में वैसे तो आप नहीं करेंगे ना, काम है अफीम खा के भी लोग करते हैं, दवाइयां खा के भी लोग काम करते हैं, लेकिन जिस वक्त निराशा आ जाए कि नहीं मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, सभी दवाइयों इलाज के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रहा, तो उसके बाद तीसरा सजेशन आप सब लोगों के लिए है कि भाई आप जो भी कर रहे हो उस चीज को टेपर ऑफ करें। टेपर ऑफ करें क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, आपके शरीर को उनकी जरूरत नहीं है। आपने जबरदस्ती उसको हैंडीकेप करके ये चीजें देनी शुरू कर दी हैं और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि शरीर खुद ब खुद अपने आप उठना शुरू होगा, अपने आप रिकवर करना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात के साथ साथ मैंने ये जोड़ दिया था कि भाई शरीर आपको हमेशा अपनी डिमांड शो करता है, अपनी डिमांड शो करता है और उस डिमांड के खिलाफ आप समझ के अनुसार चल सकते हैं। कैसे, आपके घर में एक टैप वाटर या टूटी वगैरह खराब हो गई है, आपने प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने आखा चाह भी हट जाओ पीछे मैं ठीक कर देता हूँ, वो उसने ठीक किया, पैसा लिया और चले गया, फिर खराब होगी और फिर दोबारा आएगा, अल्टीमेट उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। यही दवाइयों का हाल हो रहा है। और अगर कोई ऐसा तरीकाकार हो या ऐसा आदमी हो जिसको हम बुलाएं, वो कहे कि ठीक है भाई ये आपकी टैप तो खराब हो गई है, आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक करनी है, और अगर हमारे सामने वो ठीक करता है, हमें बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करो, हम कह रहे हैं कि हमारी टैप खराब है, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम खराब होगी तो फिर हमें पता होगा हम ठीक कर पाएंगे ना। शरीर हर एक बीमारी में इस तरह की इंडिकेशन आप सब लोगों को देता है। मैं एग्जांपल फिर इसकी दूं, किसी को उल्टी आ रही है, जी मन करता है उल्टी आ रही, क्यों उल्टी आ रही है, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ ऐसा चला गया है जो शरीर बर्दाश्त नहीं करता, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर शरीर कहता है कि इसको निकालें किसी तरह, वो उसका प्रोसेस ये है उल्टी करेगा। और आप जो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ये लो गोली अभी उल्टी बंद हो जाएगी, तो हमने क्या किया, हमने नेचर के खिलाफ किया, नेचर के खिलाफ किया, और फिर क्या होगा, अगर तो वो एक्सोटॉक्सिन है, मैंने ये बात कई बार कही है इन प्रोग्रामों में, एक इंडोटॉक्सिन होता है एक एक्सोटॉक्सिन होता है। एक्सोटॉक्सिन वो होता है कि जो बाहर से अंदर दिया गया, चाहे टीके से दिया गया, चाहे गोली से दिया गया, या खुराक हम खा रहे उसी से दिया गया, वो बाहर से दिया गया लेकिन वो बॉडी को एक्सेप्ट नहीं, जो चीज बॉडी को एक्सेप्ट नहीं है वो एक्सोटॉक्सिन हो गया। पर कुछ एक ऐसे है कि अंदर से बीमारियां ऐसी बन गई हैं, अब वो खुद टॉक्सिन पैदा कर रही हैं। मान लीजिए किसी की किडनी खराब है, यूरिक एसिड किसी को बढ़ गया है,

0: या कुछ ऐसी चीजें जब हो गई हैं, तो वो अंदर से टॉक्सिन पैदा कर रही हैं। जब तक वो अंग जिससे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किडनी है ता या जोड़ है, ज्वाइंट्स है ता, जब तक वो ठीक नहीं हो गए, तो ओ इंडोटॉक्सिन अंदर से पैदा होने वाला जहर पैदा हो रहा है, तब तक वो उल्टियां आएंगी ही, तब तक ऐसा कुछ होता ही रहेगा। तो उसके मतलब उस बेस को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन जब जहां ये बात नहीं है, साधारण सी बात है, साधारण सी बात के लिए अगर आप उसकी उल्टी बंद कर देते हो तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो कुदरत चाहेगी कि ये तब तक तो हजम नहीं हो रहा। मान लिया जाए कोई इनडाइजेसिबल चीज आपने ले ली, और ले ली तो उसके बाद मन करता है कि उल्टी करें, इसको निकाल दें। निकालने की बात चल रही है और आप उस निकालने की बात को कोई दवाई लेते हैं, उल्टी बंद कर देगी डॉक्टर ने। अब उल्टी बंद करने वाली दवाई का रेंज है 3-4 घंटे का। अब 3-4 घंटे में आम तौर पे जितने भी एक्सोटॉक्सिन होते हैं, बाहर से दी गई चीजें जिन्हें शरीर को पसंद नहीं है, वो जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो या तो डाइजेस्ट हो जाते हैं या वो अपना दायरा पास करके उल्टी वाला अगले स्टेशन पे, रेक्टम वाले स्टेशन पे पहुंच जाती हैं। और अगर फिर भी वो पसंद नहीं है बॉडी को, तो फिर टटियां आने लग जाती, फिर ऐसा होता है कि कुदरत उसके तरीके से निकालना शुरू कर देती। और फिर अगर आप उसको भी बंद करना चाहोगे तो फिर वही उल्टी का कारण होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि एक तो आपको इंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन को समझने की जरूरत है, और अगर एक्सोटॉक्सिन है और आपने उल्टी बंद कर दी तो आपको पता है कि आम नॉर्मल तौर पे डाइजेशन 3-4 घंटे लेता है। हमने रोटी खाई, हमने मीट खा लिया, हमने हैवी चीज कोई खा ली, 3-4 घंटे नहीं लेगा, 5 घंटे ले लेगा। और अगर वो दवाई के इफेक्ट के अंदर अंदर वो इनडाइजेस्टिबल थिंग्स डाइजेस्ट हो गई तो क्रेडिट आप किसको देंगे, वो दवाई को। डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी तब से लेकर मेरी उल्टी बंद है, डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी तब से लेकर मेरी टटियां बंद हैं। लेकिन उसके पीछे जो कारण था वो कारण आप नहीं समझ पा रहे। तो मेरा तीसरा पॉइंट ये है आप सबके लिए कि हर एक बीमारी में जब आप समझें कि मैं ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको इस बॉडी के ढांचे का कार्यक्रम कैसे है, चलता कैसे है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। और हमने क्या खाया, ज्यादातर मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक्यूट बीमारियां हैं तो उसमें आपको केवल 72 आवर्स का सर्वे करने की जरूरत है। 72 घंटे का सर्वे आप कर पाए तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम पहले नहीं करते थे इन 72 घंटों में हमने किया, वही मेरी बीमारी का कारण है। अगर एक्यूट बीमारियां हैं, अगर क्रॉनिक है तो उसका अलग विषय है। एक्यूट बीमारियां आम तौर पे उस 72 घंटे के आपने जो है सर्कैडियन सिस्टम के मुताबिक नहीं आपने काम किया, क्या आपने खाया जो आप रूटीन में नहीं खाते थे एक्स्ट्रा खा लिया, ये सब चीजें ऐसा, या ये एक दवाई आपने पहले कभी नहीं खाई थी अब खा ली है, तो मतलब उस एरिए में आपने क्या किया जो पहले नहीं करते थे, आपको पता चल जाएगा कि उसका कारण ये है। और जब हमें पता चल जाता है कि किसी चीज का कारण ये है तो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है हमारे लिए कि उसको हम हटा दें। और हटा सकते हैं, हटा दें तो अल्टीमेट हम ठीक हो जाएंगे। हमारी प्रोग्रेस इसलिए रुक जाती है कि हम ये समझने में असमर्थ हैं, ये नहीं समझ पाते कि मेरी बीमारी का कारण क्या है, खास तौर पे एक्यूट कंडीशनों के लिए जो अभी शॉर्टली पैदा होने वाली बीमारियां हैं, थोड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए हमें ये नहीं पता चलता कि ये किससे हुआ है। और अगर आपको पता चले कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया, अगर आपको पता चले कि आपने नाइट वॉचिंग कर लिया, नहीं काम था नहीं सो पाए और उससे ऐसा हो गया, तो आप जबरदस्ती गोली खाकर काम करेंगे तो अल्टीमेट सहना तो बॉडी को पड़ेगा ना, तो बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ही ना, तो वो उसी हिसाब से ठीक करने की जरूरत करेंगे तो लाजमी तौर से हर एक बीमारी जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तीन असूल जो हैं, ये अगर आप अपना लें, पहली बात हमने सर्कैडियन सिस्टम के नेचर पे असूल को फॉलो करके चलो, रात को रात समझो, दिन को दिन समझो, उसके मुताबिक काम करेंगे। और उसका मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया। अभी तक के एक्सपेरिमेंट्स में जो आया है वो ये है कि रात के 10 से लेकर 2 बजे तक, 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे अगर आप बेड पे नॉर्मल सो जाते हैं तो आप 20 घंटे के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और नहीं अगर करते तो फिर चाहे आप 10 घंटे बिस्तर पर लेटते रहें उसका असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम तो हुआ नहीं, नेचर तो वेट नहीं ना करेगी, इंतजार नहीं करेगी कि भाई तुम कब सोते हो फिर मैं आपका सर्कैडियन सिस्टम पूरा करूं, ऐसा नहीं है, आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। तो बीमारी के वजह से सबसे पहली चीज आपको ये करनी होगी कि टाइमली फैशन के हिसाब से, सर्कैडियन सिस्टम के हिसाब से आपको रेस्ट करनी होगी, बॉडी को रेस्ट देनी होगी। दूसरा मैंने आपको ये कहा कि एनवायरमेंट के हिसाब से या पेस्टिसाइड, अब सभी चीजें हम लोग जाए ना, ये तो ऑर्गेनिक है जी, ये तो ऑर्गेनिक है जी, अब बहुत से लेबल आप पढ़ते हैं बाजार में जाओ ना सामान खरीदने के लिए, ऑर्गेनिक, लेकिन कोई चीज ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकती, क्यों क्यों नहीं हो सकती। मान लिया जाए आपने कहा कि ये मेरे 2 एकड़ हैं, इसमें जो फसल बो दी मैंने, इसमें मैंने कोई पेस्टिसाइड कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, नेचुरल है सब कुछ जो कुछ है, लेकिन बरसात हुई पड़ोस के खेत का पानी इधर आ गया उसने तो डाली है, मान लिया ये बरसात भी नहीं हुई, तो जो आबोहवा में पराग केसर होता है, मैं समझता सभी एजुकेटेड लोग ये जानते हैं, पराग जब फूल निकलते हैं तो पराग केसर होता है दरख्त, जैसे आदमी औरत के मिलन से आगे नया बच्चा पैदा होता है, ठीक उसी तरह पराग केसर प्लांट्स में भी होता है, और वो जो प्लांट्स में जो ऐसा होता है उसको आप रोक नहीं पाएंगे ना, और वो जो चीज लेगा, अब मान लीजिए किसी बच्चे किसी आदमी को उसके जीन्स में रूमेटाइड अर्थराइटिस है, किसी आदमी के जीन्स में हिस्ट्री है कि वो कैंसर का पेशेंट है, उसके बाप को कैंसर था या माँ को कैंसर था, वही लेकर वो अपने जीन्स में आ रहा है, तो वो क्या ट्रांसमिट करेगा, ये वही चीज ट्रांसमिट करेगा ना। तो ठीक इसी तरह ही ये जो पराग केसर, हम इसको पंजाबी हिंदी में बोलते हैं पराग केसर वाली बात, ये चीज इन प्लांट्स में भी होती है, जितने भी फूडी प्लांट्स हैं, फूड के इस्तेमाल किए जाने वाले प्लांट्स हैं, खाद खुराक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लांट्स हैं, उन सब में तो ऐसी क्रिया होती है, और ऐसी क्रिया होती है तो आप ये कहें कि मैं तो भाई ये ऑर्गेनिक है जी, ये ऑर्गेनिक है तो ये सिर्फ लेबल लगा हुआ है, एक्चुअली वो ऑर्गेनिक है नहीं। अब भाई डॉक्टर साहब आपने तो बहुत डरा दिया, इसमें तो कोई ऐसा चांस ही नहीं, आपने छोड़ा कि हम बीमार नहीं होंगे, है ना। सबसे पहली बात तो ये दवाइयों वाली बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बात मैंने कही, इसी तरह शुगर की बात भी है, शुगर की बात भी है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें सब चल रही हैं कि कितनी शुगर होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता उसको एनर्जी की और ज्यादा, शुगर क्या है, एनर्जी है, हमको और एनर्जी की जरूरत चाहिए, और ऐसे ऐसे शुगर का लेवल बढ़ता जाता है तो डॉक्टर बोलना तेरे को तो शुगर होगी, एक A1C क्राइटेरिया बना दिया, अगर A1C 5.6 और 5.7 है तो नॉर्मल हो, और पहले इससे भी ज्यादा था, अब हम बोलते थे कि 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड अगर हो तो हम ये समझते हैं कि नॉर्मल है, अब ये उससे भी कम करने शुरू कर दिया, उससे भी कम को वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना होना चाहिए, तो मतलब क्या है, एक मार्केटिंग के प्रोसेस से टेंडेंसी बना दी गई कि ग्राहक कैसे बढ़ाने, ग्राहक बढ़ाने का ये तरीका है आप उस लाइन में खड़े ना हो, इसलिए ये जरूरी है कि आप वो चीज माने करें जो आपका शरीर कह रहा है, और शरीर हर बीमारी में आपको इंडिकेशन, मान लिया जाए आप बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और डॉक्टर बोलता है कि ना भाई तेरी तो शुगर ज्यादा है, आपका आपको नींद ठीक आ रही है, आपका खाना पीना ठीक है, आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी का एक सेटअप ऐसा हो गया कि जितनी आपकी शुगर है, जितना आपका ब्लड प्रेशर है, वो आपकी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है, और उस एक्सेप्टेबल को आप जबरदस्ती अगर नीचे लाओगे तो अल्टीमेट ये आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर को चेंज करेगा, और चेंज करेगा इतना ही नहीं ये आपको अडिक्ट करेगा, अडिक्ट का मतलब नशे के पे लगा देगा और फिर आप मजबूर हो जाएंगे उस चीज को खाने के लिए। इसीलिए आप देखिए शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, थायराइड के मरीज, ये सब लोग इस तरह लग गए हैं दवाइयां पे। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये लोग बोले ये आपको जिंदगी भर खानी ही है, अब आपका और कोई हल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई हल नहीं? जब हम वही डॉक्टर सभी लोग ये पढ़ के आते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक रेट दो चीजों से बना है, एनाबॉलिक रेट और कैटाबॉलिक रेट से बना है। अब प्रोसेस तो होना ये चाहिए कि हमें एनाबॉलिक रेट को बढ़ाना है और एनाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए ये चीजें हैं, सर्कैडियन सिस्टम है, खुराक है, एनवायरमेंट है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ध्यान देते हैं तो एनाबॉलिक रेट बढ़ेगा और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो चाहे जो मर्जी दवाई खाते जाओ टेम्परेरी तौर पे होता रहेगा और फिर आप उस चीज टेम्परेरी के एडिक्टेड हो जाएंगे और फिर आप लगातार दवाई खाएंगे। जितनी भी दवाइयां हैं ना उनके दो तरह के इफेक्ट हैं, एक है वैसो कंस्ट्रिक्शन, एक है वैसो डाइजेशन। और अगर आप जब भी कोई बीमार होता है आमतौर पर बॉडी के जितने भी सेल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनसे गार्बेज निकल नहीं पाता, इसीलिए बीमार रोग होते हैं। कोई किसी भी तरह की बीमारी हो, वो चाहे किडनी के सेल हो, चाहे लिवर के सेल हो, चाहे हार्ट के सेल हो, चाहे ब्रेन के सेल हो, जब गार्बेज नहीं निकल पाता तो वो बीमार होते हैं। मतलब क्या हुआ, वो बॉडी का फंक्शन किसी ना किसी कारण से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं, वैसो डायलेटर मेडिकेशन दी जा रही है। और वैसो डायलेटर मेडिकेशन जब देते हैं तो फिर आप उसके एडिक्टेड हो रहे हैं, आपको इस तरह लगाया जा रहा है उसके ऊपर कि आप एडिक्टेड हो रहे हैं। और एडिक्टेड होने के बाद फिर आपके पास कोई और चारा ही नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये आपको सजेस्ट किया है कि भाई नेचुरल वे ये है कि हर चीज के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें और उसको टेपर ऑफ करें। और टेपर ऑफ करने का तरीका मैं अभी है मेरे पास कुछ मिनट में आपको बता दूं। मेरे पास जब मैं इंडिया में था तो इस तरह के लोग आते थे जो अफीम उसको बोलते चक के साथ खाते हैं, उनका तोले का मिश्र है नहीं, कि मासा खाते हैं कि दो मासे खाते हैं कि आठ मासे खाते हैं या तोला खाते हैं कितना खाते हैं अंदाजा नहीं, पकड़ा गोला और चक खाया और मुंह से बस पानी पिया। इस तरह के लोग भी थे और जिनको मैंने अफीम भी छिड़ाई, जिनको मैंने और तरह के नशे भी छिड़ाया। तो मेरा तरीका का क्या होता था कि भाई इतनी फीम खाते हो एक महीने में, मैं इतनी खाता हूँ जी ले आओ, वो उतनी फीम ले आता था और उसके बाद उस अफीम को मैं एक बोतल में पूरी में घोल देता था। दूसरी तरफ उसी तरह का ब्लैक कलर का रस होता है हमारे यहाँ, ठीक है, रसौंत, उसको हम घोल देते थे तो कलर दोनों का बराबर होता था, लेकिन एक में नंबर एक लिखा है जिसमें सही फीम है, दूसरे में कलर दूसरा है जिसमें दो नंबर लिखा हुआ है। तो उसको हमने ये कहा कि आज तुमने ये इसके एक महीने की आपकी डोज है, अगर दो बार खाते हो तो दो बार, अगर एक बार खाते हो तो एक बार उतनी निकालनी है और दूसरी बोतल से उतना इसमें डालना है, जो दूसरे नंबर की बोतल है उससे तुमको इतना डालना है। और इसी तरह ही आप डेली रोजाना इससे निकालते जाओगे, दूसरी बोतल से डालते जाओगे, इससे निकालते जाओगे डालते जाओगे, और शेक जरूर करना है उसको डेली डेली शेक करते रहना ताकि ऐसा ना हो कि कॉन्सेंट्रेशन नीचे बैठ जाए। और जब तक वो 30 दिन पहुंचते थे तो उसको लगता था कि अब अफीम की तो मुझे जरूरत ही नहीं, जब उसको बताया जाता था कि अभी कॉन्सेंट्रेशन तो आपकी बहुत कम होगी, ये जो डॉक्टर ने जो दूसरी बोतल आपको दी है ना दवाई की, ये दवाई तो थी ही नहीं। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये केवल अफीम के लिए नहीं किया जा सकता, ये दवाइयों की एडिक्शन के लिए भी किया जा सकता है। जितनी भी दवाइयां आप खाते हो, जितनी भी सारी चीजें आप छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ क्यों नहीं सकते, छोड़ सकते हैं, उसका तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई भी बीमारी इस तरह की नहीं है जिसके लिए ये कहना पड़े कि भाई आप तुमको तो जिंदगी भर दवाई खानी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शरीर का एनाबॉलिक रेट आपको बढ़ाना है और एनाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए आपको नेचर के असूल को फॉलो करना होगा। पहली बात तो आप नींद हिसाब के मुताबिक लें, दूसरी बात आप ये कहें कि आपकी जो खुराक है नियमित तौर पे कोशिश करें कि वो इस तरह हो कि जिसमें ज्यादा केमिकल वाली खुराक ना हो। वो जैसे आजकल तो सारा बाजारों में जाओ तो जितने भी चिप्स हैं, ये वो जितने भी है सीरियल्स हैं, वो सब इसी तरह मेडिकेटेड है सब। कोशिश करें उसको छोड़ सके तो छोड़े, नेचुरल चीजें लेकर उसको आप खुद बनाएं ताकि उसमें आपकी कम से कम, ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है कंसंट्रेशन उसकी, उसमें भी है, लेकिन कम से कम कंसंट्रेशन हो जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर का जो कंसंट्रेशन बन चुका है पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज का, किसी केमिकल्स का, वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा खारिज होना शुरू हो, ज्यादा बॉडी से निकास होना शुरू हो और अल्टीमेट आप फ्रेश हो सके। तो ये तरीकाकार दवाइयों के लिए भी है, मैं अकेला फीम की सिर्फ आपको एग्जांपल दी है कि ऐसे ऐसे होता है और होता है, क्योंकि ये मेरे लाइफ की प्रैक्टिकल की बातें जो मैंने की है पेशेंट का, ये हो सकता है। तो इसलिए आगे से अगर कोई भी मरीज किसी भी बीमारी का कहीं भी इलाज करवा रहा है तो ये तीन बातें जरूर अपना लें और आप देखेंगे कि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, अब प्रोग्रेस होनी शुरू होगी क्योंकि अंदर से लाइफ जाग रहा है, अंदर से एनाबॉलिक रेट बढ़ रहा है। तो हम लोग चल रहे थे वो मिडियास्टाइनम की बातें कर रहे थे, थायराइड की बात मैंने की थी, लेकिन ये सवाल आ गया था बीच में कि क्यों लोग ठीक नहीं होते, और जो ठीक नहीं होते तो उनके पीछे आम तौर पे कारण क्या है। वो आम तौर पे कारण मैंने आप सबको बता दे, सर्कैडियन सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, फूड एडल्ट्रेशन, और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताता आया हूँ। फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है 4086871899, ईमेल एड्रेस homeomedicine@yahoo.com। मुझे एक बात का एतराज जरूर है कि भाई जितने भी सुनने वाले हैं उसमें मैं समझता हूँ शायद मेरी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो सब शायद तंदुरुस्ती हो गई हैं, तो उनको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, वो तंदुरुस्त हैं, क्योंकि उनका ये जो लेक्चर हो रहे हैं, मैंने आपको बोला ना कि 6000 तक लोग पहुंच गए हैं और रोजाना जो एक्टिव तौर पर सुन रहे होते हैं 30-32 लोग होते हैं जी, और उनमें से औरतों की तादाद जो होती है वो सिर्फ 2-3% होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चियां भी इसको सुने, मेरी बहनें भी इसको सुने, माताएं सुनेंगी तो कम से कम आने वाली जनरेशन को तो बता पाएंगी या कुछ कुछ है। पहले तो ऐसे ही होता था ना कि गांव में अच्छा कोई बीमार हो गया, अच्छा वो फलानी माई से पूछो क्या होता है, तो माई कहाँ, मेरी को मेडिकल कॉलेज में छोड़ो पड़ गया, एक्सपीरियंस था उसका, एक्सपीरियंस के बेस के उसके ऐसे हुआ था, हमने ऐसे कर दिया जी। तो इसलिए जरूरी ये है कि ये बातें आप सुने और सुनने के बाद आप अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे आजमा कर देखें, आपको फायदा होगा। तो आप सब का रब रखा, आप सब की अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, सत श्री अकाल,
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, श्रोतो ताडा भी धन्यवाद डॉक्टर साहब, चीमा साहब थैंक यू।
0: तो इहदा मतलब कल भी तुसी होना है?
2: हां जी हां जी, कल भी करांगे जी,
1: कल नु मैं नहीं होना जी, कल नु मैं नहीं होना, कल नु मैं नहीं होना, टाउन तो मैं बाहर जा रहा,
0: कोई गल नहीं, रिलैक्स हो गए, चलो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मैं तो प्रोग्राम करना, मैं तय करना है, करो जा जो कर सकते हो करो, नहीं है तो कोई ऐसी मजबूरी वाली गल नहीं, कर लो ठीक है,
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, अज का प्रोग्राम है जरा कमाल करती, ए जिन्हू कहने होंगे दिमाग जरा थले होगा ना, दिमाग का थला, उथे तक पहुंच गई गलां थोड़ी अज की,
0: बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह खक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआ खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आप सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला।

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फॉर

0: अज पिया तोहे प्यार दू ओ गोरी भैया तो प्यार दू।
1: वाह वाह वाह राधना जी, अज मदर डेरी है तुहानू पता होना
0: जी।
1: दुनिया दी सोहनिया मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे?
0: जी बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
0: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
0: यूपी च मंजली या मंजला भरा विचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफज आए, थैंक यू।
0: मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक
0: है। सचिन छोटा जिहा सीगा ते उहदे उत्ते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
0: ए गीत वैसे तो सारे मावां ले इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: होई है, ये ते काफी
0: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा।
0: ते जेड़ा मैं आप जी नूं सुणाउण लगी हां ओ किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा,
0: और क्योंकि मेरा शौक रहा ते मैनू तो फिर बचपन के सारे गीत
1: याद ने जी। मैं बिल्कुल
0: जी, ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मेरे ख्याल भी 200-250 गीत मेनु मुंह जवानी बचपन की याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी।
0: जी हां जी बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है। ते मेरी मां ने कहा गुड्डी तेन ए गीत याद है, तू ए गीत
1: सुना। तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
0: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण वी
1: आ। तुहानू गुड्डी
0: तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे
1: हो?
0: आजा हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नां नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नाम है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा कुड़ियां दे नाम
0: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मेनु गुड्डो कहंदे सी प्यार नाल।
1: गुड्डो गुड्डी, हां जी हां जी
0: हां जी। ते ओ गीत मैं आप जी ने
1: दोला नानी नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहंदे सी।
0: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहंदे हुंदे सी?
0: उदों कहंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ उरे आई। तैनू सुनंदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा।
0: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
0: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
0: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਰੇਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ।
0: ਮੈਂ ਚੁੱਪ
1: ਹਾਂ,
0: ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

वार यू आर, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबा लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूर जहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी ओ जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनों, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी ते उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदियां दा क्यों नहीं माण करदे,

करार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत स्रोतियों ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आस जिणों दिलां ते दस्तक देण वाला तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला पाखदे मसले लियाउण वाला पंजाब दी सैर करवाउण वाला हक सच दे ढोल वजाउण वाला कईयां मथियां ते त्यूड़ियां लबां ते हासे लियाउण वाला तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला

0: ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
1: आ जा पिया तो है प्यार दू, ओ गोरी मैया तो प्यार दू, इसलिए तू इतना उदास सुखे सुखे हूँ।

0: को कुछ चिर मौती उड़ीकेंगे, जेड़ी नाड़च लगे इंजेक्शन हो जे बंदे उसका एक्शन, नाड़ा सुकन शरीर दियां मां प्यो रोण च नानी पिटदी कड़ियां आउण अखीर दियां।
1: साडी सुन लो वीर भरावो ऐसे नशियां तो सौ पावो, मंगण होर खाण।

0: तेरी चुगती मेहनत हिम्मत ही सहजल तेरे काज सवारों की बंदे आ तेरे का अंधविश्वास दा राह चुनेदा कैंटी मंत्र दी जदों बजामदा कोई समझ उते ताले लग जांदे
1: वाह वाह बहुत खूब
0: कर छड के अकल जांदे आउंदा कोई दूसरे पासे सकूल दी बजे घंटी सानू ज्ञान विज्ञान बल तोर दी है।
1: क्या बात है क्या बात
0: है ना फैसला तुसी के किधर जाना
1: बहुत खूब बहुत
0: पहचिन गले बड़े ही गौर दी है
1: बिल्कुल ठीक
0: सहजल गल बड़े ही जी है झूठे आंदा झूठ वेख के अवला रह टूटे वेख के अवला गया टूटे आने झूठे सच गल्ला रह गया झूठे आने झूठे बिच सच कला रह गया अल जुग बिच झूठ होया परदाने झूठे दा ही बोल वाला झूठा ही
1: महान
0: अल जुग बिच झूठ होया परदाने झूठे दा ही बोल वाला झूठा ही महान सच नहीं मैं यारो सच नहीं मैं यारो आटे दाई पल्ला रह गया झूठे आंदे झूठे बिच सच कला रह गया झूठे आंदे झूठे बिच सच कला रह गया
1: वाह
0: अरदासी मां मैं सच ते इंज लगे तार दिता पैर टुटे कच ते
1: वाह वाह वाह
0: तार दासी मान बड़ा अपने मैं सच ते इंज लगे धर दिता ਟੁੱਟੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਚ
1: ਸੱਚ
0: ਕੱਲਾ ਰਹਿ
1: ਕਲਰ
0: ਗਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੈਰ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਮੰਨਵਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੈਰ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਮੰਨਵਾ ਲਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਸੱਚ ਕੋਈ

वारिवा वंडरफुल सॉन्ग, क्या बात ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा ओ ये के लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी ओ जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा है, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होने वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ।

0: असली कारण तेल
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो थाडे नाल रूबरू हो रहे हैं जी ते आज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं ताड़े नाल सो तुहानू पता कि एक दिन छड़ के ते दूसरे दिन असी प्रोग्राम करदे हां जिदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दियां दुनिया दियां खबरां लैके तुहाडे नाल रूबरू हुंदे आ ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह ओह दिंदे आ जिदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे आ क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे आ जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करते इंग्लिश च भी करते अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करते आ सो टाइम मिले ते ओ प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दियां वीडियो ते फेसबुक भी दे फेसबुक ते लाइव भी हुंदे आ सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दियां कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चुनवे कोशिश करी दे आ कि वधिया गीत कल्चर गीत जिहड़े जिहदे विच वैगलर ना हो जिहदे विच इहो जिहा शब्द वाली ना हो असी कोशिश करी दी है तुहाडे तक पहुंचाउण दी सो लो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी कृपा होगी तेरी मालका ए बाबा गुलाब सिंह जी
2: जिहड़ा हैगा गुरदीप सिंह संधू साहब जुड़नगे ते अज दे प्रोग्राम अपना दो घंटे दा तुहाडी सेवा च लैके हाजिर हो गए दोस्तो आज रल मिल के इस प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां ते पहला गीत सिंदर कौर प्रकाश कौर जी दा जुत्ती कसूरी
3: लो जी

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह ठक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा, टाइम चेंज हो गया सी, रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे वाली है। सो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। लो कुछ गीत सुनदे हैं जी। पहला गीत आपां सुनदे हैं, बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी, ते फिर आपां अगले गीत दे नाल चालू करांगे जी।